सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय एपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण

0: भगवान संध्या सेवा छ बजे हमारा सन्देश स्वागत उत्पादित हमारा सन्देश प्रक्रिया साथी एफ एम राजापुर भवई एफ एम गरिया पार्टी का रेडियो प्रतिबोध एफ एम कोलपुर रेडियो हाथमारो सानसी गांव पालिका बांकी मसले प्रसंग प्रसारण पीठी बात हमारा सन्देश का खरीदारी मुख्य मुख्य समाचार का शीर्षक से बांसुरी मकेश तथा खाद्य पोषण मापान तथा समावेशीकरण वितरण संरक्षित वन जंतु अक्टोबर सहित प्रक्रिया में एक जनक प्रकार बाल प्रक्रिया मंत्र स्तरीय हरिल पूजन अंचल लुम्बिनी प्रदेश में कांग्रेस का मंत्री प्रदेश राजीनामा और सरकारी पूर्व अनुसंध डॉक्टर के सी बीच वार्ता बांसुरी नगर पालिका में कृषि तथा खाद्य पोषण मापन तथा समावेशीकरण संबंधी एक दिन आभिमुखीकरण कार्यक्रम निर्भर अपान तथा समावेशीकरण एवं संचार केन्द्र देख नेपाल का योजना तथा एफएओ का सहयोग में नगर प्रमुख हरक बहादुर खड़का का प्रमुख अध्यक्षता में कार्यक्रम निर्जला को अपान तथा खुला मनयन कर कृषि तथा खाद्य पोषण क्षेत्र में पहुंच विस्तार कर स्थानीय सरकार हो सरकार द्वारा निकाय उपन थप जिम्मेवार बनाने उद्देश्य आयोजित कार्यक्रम में सहजकर्ता जीवन गिरी अपांगता का अवस्था प्रकार चुनौती तथा कृषि को खाद्य प्रणाली में समावेशीकरण को उपाय बारे सहजीकरण कर कार्यक्रम का विशिष्ट अतिथि प्रयात गांव पालिका का अध्यक्ष हिमालय त्रिपाठी शुभकामना एफएओ का कृषि तथा खाद्य पोषण के मत देश अपांगता विलक मरीन कृषि तथा खाद्य प्रणाली में शेषारण अपांगता मैत्री नीति योजना और संरचना आवश्यक प्रकृति स्थानीय सरकार सेवा सुविधा हो अवसर में समावेशी पहुंच सुनिश्चित कर पढ़ना जोर दिया कार्यक्रम में पांचवड़ी नगर पालिका और प्रयातार गांव पालिका का जनप्रतिनिधि निर्भरिक शाखा का शाखा प्रमुख कृषि तथा सहकारी संस्था का प्रतिनिधि तथा सरकार द्वारा निकाय का पदाधिकारी वर्ग सहभागी देख नेपाल का सामर्थ्य परियोजना का संयोजक सत्यनारायण चौधरी शांत देख नेपाल का संस्थापक सदस्य टेकराज जोशी का अध्यक्षता में निम्जला कार्यक्रम में स्वागत मंतव्य प्रक्रिया पान पुनर्स्थापना केन्द्र का अध्यक्ष नेत्र प्रसाद साफ कोटा बर्तिया में सुरक्षित संरक्षित वन जंतु कोट का रक्त प्रहार सहित एक जना पुत्र पूर्वाट राजापुर नगर पालिका एक तुलतपुर से संरक्षित वन जंतु कोट का रक्त प्रहार छाला सहित प्रहरी 36 वर्षीय तरुण सुनहा पकड़ाव कर रखो जिला प्रहरी कार्य बर्तिया इलाका प्रहरी कार्य राजापुर से खटक संयुक्त प्रहरी टोली राजापुर नगर पालिका एक तुलतपुर सुरंजा पुल लखा से ठाव का 26 वर्षीय अरुण सुनहाना अखेट प्रहार 4 फीट 5 इंच लंबा वो 8 इंच चौड़ा छाला सहित नियंत्रण में रखा प्रभारी पकड़ाव प्रकट सुनहाना आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा कर पाचा थप अनुसंधान तथा कार्यवाही का डिवीजन वन कार्यालय उड़िया प्रत्या मुफसिलक चलने बालपर्पिया नगर पालिका में थारू समुदाय का परम्परागत नगर स्तरीय हरित पूजन अंचल नगर पालिका का आयोजना में बालपर्पिया नगर पालिका पांच पर्दिया गांव में आयोजना पूजा में नगर फलघर पूर्वा केशव प्रभु चिराठी का सहभागिता में हुई धान लगाकर निंजल पासा धान बारी में रोपकिरा निकाल बस उत्पादन मजा होना कामना सहित कैसीना हरेली पूजा पाचक समय परम्परागत पूजा करना तरीका लोक लागत पाचक परम्परा होना संरक्षण करना उद्देश्य सामूहिक पूजा नगर स्तरीय हरेली पूजा कर बालपर्पिया 10 लकुलानी थारू जानकारी तलवाठी पूजा में धान बारी में लगना रुपया चाँदी फटिंगा लगायत का शत्रु खीरा फटना धार्मिक विश्वास सज्जा देवता फैहार विधिपूर्वक पूजा कर नगर स्तरीय हरेली पूजा उद्घाटन कार्यक्रम में नगर प्रमुख छविलाल थारू बालपर्पिया का थानुआ का इतिहास पूजा परम्परा तथा थारू सामुदायिक संस्कार संस्कृति संरक्षणको महत्वबारे जानकारी दिएर
1: समाजले पनि सबैले पढाउनु पर्छ।

0: ऐसे सर्वोत्तम रसाई कार्यक्रम द्वारा लोकप्रिय यदि सफल द्वारा पूजा केन्द्र में चाहिए
1: विश्वास मतलब सही जानकारी पाएगी आपको।

0: भाव स्वस्थ बच्चा उज्जवल भविष्य किसान पान रहो स्वस्थ ही बताओ
1: रेडियो चलचित्र जारी संदेश।